0: बल बल जाइए, बल बल जाइए।
1: ससा नदी दे कंडे ते बड़ा घोर युद्ध होया, भाई उदय सिंह ने साहबजादा अजीत सिंह ने ऐसी तेग चलाई, दुश्मनां नूं भजना पै गईयां। ससा बड़ी ठाठा मारदी सी, इस नूं पार करना बड़ा औखा सी। ससा दे किनारे ते गुरु महाराज दे सिख संगतां ते गुरु महाराज दा परिवार विछड़ गया।

0: हर अखो सतनाम।
1: जिथे बाबा पैर
0: जिस धरती ते चरण पाए उस स्थान ते पूजा अकाल पुरख दी शुरू हो गई। ते जे किसे प्यार वाले दे हिरदे दे विच चरण पाए उस हिरदे विचों भी अकाल पुरख दी पूजा शुरू हो गई। जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ। माण करो जिस दयालता दी जिस कृपा दे उत्ते गुरु नानक दी सोई पहुंची है किसे दी नहीं पहुंची। बाबा जी वचन कर दे सी गुरु नानक साहब जी दे दुनिया नू तारन दे विच चार विशेष गुण सन। चार विशेष गुण की सब तो पहला विशेष गुण के अज तक किते मिसाल नहीं के अवतार पापी दे घर चल के गया होवे आ वी झोली पर दात लै लै। आखो सतनाम। दूसरी विशेष गल जिन्नू भी तारिया बाणी दा तीर मार के सत संगत। तीजी विशेष गल जिन्नू भी तारिया उदा पिछला लेखा नहीं पुछया। अज के आखो सतनाम। नहीं तो लेखा तो है ना। पर तुहाडे सामने मिसाल है कि सजन ठग दा पिछला खाता किथे गया। जी के आखो सतनाम। माण करो ये गुरु नानक। दीपालपुर कौड़ी दा पिछला लेखा किथे गया। कौडे राक्षस दा भूमिए चौर दा बली कंधारी। सतगुर गुणी निधान है गुण कर बख्शे अवगणे आरे। किते ते सजा दे के औगण नू बख्शिया जांदा किते गुण कोलों दे के औगण लै के इंज औगण बख्शे जांदे। ए तीजी विशेषता पिछला लेखा नहीं पुछिया। पिछला साव नहीं पुछिया गुरु प्यारे। हुण इक चौथी गल सुनो फिर होर प्यार आ जांदा। गुरु नानक दे चार तारण विच चौथी विशेषता कि जिदे ते नजर कीती है उनू केवल तारिया नहीं उदी इन्नी बैटरी चार्ज करती कि अगों कईयां नू तारन वाला बना दिता। गज के आखो सतनाम। बड़ी वड्डी गल है। इक ते इकनू तार दिता उनू अगों जोगा बना कोई लै लो सज्जन ठग नू लाके दा थापता लै हुण तू देख उहदा केवल उहनू नहीं अगों तारन योग बण। सालसराय गौरी नू निरी उहदी अख नहीं खोली नाल मंजी दे दित्ती। आ इन्ने साल तेरी उमर ही तेरे बादों तेरा नौकर बैठेगा अधरका। उह फिर इस सारे इलाके नू निरंकार दे घर चों दातां लैके गज के आखो सतनाम। ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ।

अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी। गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणिया दे मान, नितानिया दे तान, नियोटिया दी ओट, नियासरिया दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते।

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्ने छिलछू है न कोई।

ते हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चुंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने ना विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै नीको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै नीको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पै गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरु शरण विमुख

वंश घात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास द्रोही आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कपूर न चखई, दुर्गंध सुखावे काऊ कपूर न चखई, दुर्गंध सुखावे हाथी नीर न वालिए सिर छार उड़ावे, तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे, निंदक नाम भी होणिया सतसंग न पाए, मूर्ख सच न जाननी, निंदक

थक आए भक्ति सार, थक आए पर बंधना अखबार, थक पर्यो प्रभु दरबार। थक आए प्रभु की शाम, चार कुंठ दस परमे, जोन अनेक बिखे प्रम आयो, आए अनेक जन्म प्रम शरणी। लख 84 जुना परम दे से पाशाह तुहारे द्वारे आए हाँ, आए अनेक जन्म।

मोदी खाना ले दिता, आख्या इथे बैठ के हुण दुकान करेगा तां इसदा चित दुकान विच लग जाए। साहब जी दुकान ते बैठ गए, किरियाने दी दुकान है, जो कोई लोड़वंद आउंदा है चोली अगे करदा है, गुरु नानक ओदी चोली भर देंदा है। एक दो तीन चार पांच जेड़ा आई जाऊंदा है गुरु

तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखिया के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते देई जांदा है, ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते खर्च

रोटी खाना छोड़ दिता। दौलत खान ने बड़े मिन्नत की थी, आख्या होड़ नहीं लेना। उथों वे ही नदी ते आए, बाला नाल है। साहब जी ने आख्या, बालिया तू साडे बस्तरां दा ध्यान रख, ते असी वे इश्नान कर आई।

कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। सिपाही जयराम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गया। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी, भरोसे वाली सी, कहन लगी इवे ना आखो, मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले, इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डूब गया, लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है, वो कदे डूब नहीं सकदा। ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया, आवाज आई बेबे करतार चित आवे, उठी बजी बेबे नानकी।

संसार विच हुण जगत जिया नू तारन वास्ते निकल पए। जिथे किथे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह गए, जे सज्जन ठग कोल गए तां सज्जन ठग नू ठग तों संत सज्जन बना दिता। जे भूमिए चोर कोल गए ते भूमिए चोर नू साध बना दिता, साधु बना दिता। जे गुरु नानक दी नजर कोड़े रिठे ते पई तां ओ रीठा कौड़ा ना रहा, मिठा हो गया। जे गुरु नानक दी नजर कोड़े राक्षस ते पई ते ओ राक्षस

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोना दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते पाईसा पाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह दी मित्रता सी। पाईसा फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उनां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन, द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन, अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन, सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इस नूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ये सदाउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही, वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन

ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जाता है, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जाता है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लैके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षणा लै के पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लै के सिंघासन वल वधे।

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न दोख है न दंड

भली राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले कहूं फूल होए के भली राज पूले कहूं भवर होए के